0: एक नहीं दात आपस तेजो पाई है नानक साकरमात साहेब तुठे जो मिले महला दूजा
1: एक नहीं चाकरी जित पाओ कसम ना जाए नानक सेव कांडी है जिसे ती खसम सम

एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरभउ निरवैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद चक कृ चिहन यर भरन जात यर पात नहन जिह रूप रंग यर रेख पेख को कह न सकत केह अचल मूरत अनुभव प्रकाश अमितोज कहिज कोट इंद्र इंद्राण साहे साहन गणिजय त्रिभवन महीप सुर नर असुर नेत नेत बन त्रिण कहत त्वय सर्वनाम कथ कवन कर्म नाम भरनत सुमत सेवक कै भरपूर जुग जुग वाह गुरु तेरा सब सदका निरंकार प्रभ सदा सलामत कह न सकै को तू कद का ब्रह्मा विष्णु सिरे तै अगणत तिनकौ मोह भया मन मद का चवरासी लख जोन उपाई रिजक दिया सब हु कौ तद का सेवक कै भरपूर जुग जुग वाह गुरु तेरा सब सदका सहंसर दान दे इंद्र रोआया परस राम रोवै घर आया अजय सरोवै भीखिया खाए ऐसी दरगह मिलै सजाए रोवै राम निकाला भया सीता लखमण विछुड़ गया रोवै दह सिर लंक गवाए जिन सीता आंधी डौरू आए रोवह पांडव भये मजूर जिनकै स्वामी रहत हदूर रोवै जनमेजा खोय गया एकी कारण पापी भया रोवह सेख मसाय कपीर अंतकाल मत लागै भीड़ रोवह राजे कन पड़ाए घर घर मंगह भिखिया जाए रोवह किरपन संचह तन जाए पंडित रोवह ज्ञान गवाए बाली रोवै नाह पतार नानक दुखिया सब संसार मन्ने नाओ सोई जिन जाए औरी कर्म न लिख लाए वेण तुद होर जे मंगना सिर दुखां कै दुख देह नाम संतोखिया

छुटिया खेन पुलन हार बखसन हार बखसल नानक पार उतार सुखो टल गौर सेविया अहनिस सहज सो भाए दर्शन परस ऐ गुरु कै जन्म मरण दुख जाय होवै सिफत खसम दी नूर अर सौ कुर सौ चटिया

अनाहद बानी हंस होए हीराले पछाने रहौं कहे कबीर हीरा अस देखियो जग में रहा समाई गोपता हीरा प्रगट भयो

कह कबीर हीरा अस देखियो, जग में रहा समाई, गुप्ता हीरा प्रगट भयो, जब गुर गम दिया दिखाई, वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह। असम श्री कबीर जीओ के दो पदे, एक ओंकार सतगुर प्रसाद, हीरा हीरा भेद पवन मन, सहजे रहया समाई, सगल जोत इने हीरे बेदी, सतगुर बचनी मैं पाई।

0: तेरा करपला तेरे कर आनंद वधाई तुद कर मान मता तेज अपना आप जर सर्व कला भरपूर दिसे जत कता नानक दासन दात दे आगे बिनबता।
1: श्लोक पवन गुरु पानी पिता माता धरत महत दिवस रात दुहदाई दाया केल सगल जगत चंगियाइया बुरियाइया।

माता धरत महत दिवसरात दुदाई दाया खेलै सगल जगत चंगियाईया प्रियाईया वच धर्म हदूर करमी आपो अपनी के नेड़ा के दूर जिनी नाम ते आया गए मसकत काल नानक ते मुख उजले केती छुट्टी नाल जिनी नाम ते आया गए मसकत काल नानक ते मुख उजले केती छुट्टी नाल वाहे गुरु जी का खालसा वाहे गुरु जी की फतेह।

गए मशक्कत का नानक ते मुखे उजले केती छुटी ना जिनी नाम ते आया गए मशक्कत का नानक ते मुखे उजले केती छुटी ना। वाहे गुरु जी का खालसा वाहे गुरु जी की फतेह।

पुरख निरंजन हर पुरख निरंजन हर अगम अगम अपार सब त्याव है सब त्याव है तुद जी हर सच्चे सिरजनहार सब जी तुम्हारे जी तू जिया का दातार हर त्याव हो संत हो जी सब दुख विसारन हार हर आपे ठाकुर हर आपे सेवक जी क्या नानक जंत विचार तू घट घट अंतर सर्व निरंतर जी हर एको पुरख समान एक दाते एक पेखारी जी सब तेरे चोज

जिनका जो मोह पग नहीं चालै, हम देखा तह डूबियले। मान एक न चेत समूढ़ मना, हर विसरत तेरे गुण गलिया रहाओ। ना हो जति सती नहीं पढ़िया, मूर्ख मुगदा जन्म भया। प्राणवत नानक तिन की सरना, जिन तू नाही विसरिया। आसा महला पंजवा, भई प्रापत मानुख दे हुरिया। गोविंद मिलन की एह तेरी वरिया, अवर काज तिर कित न काम। मिल साध संगत।

तरे नहीं आने ओ राम रहीम पुराण कुरान अनेक कह मत एक न माने ओ सिमरत शास्त्र वेद सबै बहु भेद कह हम एक न जाने ओ श्री असपान कृपा तुमरी कर।

करूं? बोलो जी। पंजां तख्तां सरबत गुरुद्वारियां दा ध्यान धर के बोलो जी वाहे गुरु।

0: जको आप करे परगास कोड़े नानक जी उपाय कै लेख ना वे धर्म बहालिया तू सच्चे सच निबड़े चुण वख कटे जज मालिया थवन पण कूड़ियार मोह काले दोजक चाले अंदर नायर तेस जिन गए हार गए से ठगण वालिया लेख ना वे धर्म बहालिया धर्म बहालिया धर्म बहालिया
1: ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹਰ ਗਏ ਸਠਗਣ ਵਾਲੇ।

0: काल समुंदर पै रूप प्रगट हरे नाम उदाहरण बस है संत जस हृदय दुख दरिद्र निवारण निर्मल पेख अपार तास बिन अवर न कोई मन बच जिन जान्यो भयो तहे समसर सोई तरन गगन नव खंड मह ज्योत स्वरूपी रहो पर पन मथुरा कश भेद नहीं गुर अर्जुन पर तख हरा अजय गंग जल अटल सिख संगत सब नावे नित पुराण बच है वेद ब्रह्मा मुख गावे अजय चवर सिर ढुले नाम अमृत मुख लिहियो गुर अर्जुन शिर सतर आप परमेश्वर दियो मिल नानक अंगद अमर गुर गुर रामदास हर पह गयो हर बंस जगत जस संचर्यो सो कवन कहे श्री गुर मोयो।
1: देवपुरी मैं गयो आप परमेश्वर पायो हर सिंहासन दियो श्री गुर तै बैठायो रहस कियो सुर देव तोहे जस जय जय जंपै असुर गे ते भाग पापिन पीतर कंपै काटे सो पाप तन नरों के गुरु राम दा जिन पायो शतर सिंहासन प्रथमी गुर अर्जन को दे आयो अब राखो दास पाठ की लाज जैसी राखी लाज भगत प्रहलाद की हर नाख छारे कर आज फुंद्रोपती लाज रखी हर प्रभ जी छीनत बस्तर दीन बहु साज सोदामा अपदा ते राखिया गिनका परत पुरे तह काज श्री सतगुर सो परसन कलयुग हुए राखो दास पाठ की लाज
2: जगत उदाहरण नव निदान भगत पव तारण अमृत बूंद हर नाम बिस्की बिखे निवारण सहज त्रोवर फल्यो ज्ञान अमृत फल लागे गुर प्रसाद पाई है तन ते

0: बन आवे।
1: सतगुर नाम एक दिव मन जपै दृढ़, तिन जन दुख पाप कहो कत होवै जियो। तारन तरन खिन मातर जा को दृष्ट तारै, शब्द दिद विचारै काम क्रोध खोवै जियो। जियन सबन दाता अगम ज्ञान बिख्याता,

निर्मल नाम सुधा पर पूरन शब्द तरंग प्रगट तदन आगर गहर गंभीर अथाह अत बड सो पर सदा सब द्रत नागर संत मराल कर एकंतु हल तिन जम त्रास मिट्यो।

एक ओंकार सतगुर प्रसाद राग सूही महला तीजा घर तीजा भगत जना की हर जियो राखै जोग जोग रखदा आया राम सो भगत जो गुरमुख होवै हौ मैं सबद जलाया राम।

बोलो जी वाहे गुरु। एक ओंकार वाहिगुरु जी की फतेह। श्री भगवती जी सहाय। वार श्री भगवती जी की पातशाही दसवीं। प्रथम भगवती सिमरक गुरु नानक लई त्याय। फिर अंगद गुर ते अमरदास रामदास हुई सहाय। अर्जन हर गोबिंद नौ सिमरौ श्री हर राय। श्री हर कृष्ण त्याई जिस डिठै सब दुख जाय। तेग बहादुर सिमरै घर नौ निद आवै ताय। सब थाई हुए सहाय। दसवें पातशाह श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी। सब थाई हुए सहाय। दसां पातशाहियां दी जोत

गुरु बोलो जे पंजा प्यारिया चौहान साहिब जादिया चालिया मुकतिया हठिया जपिया तपिया

दर्शन इशनान चौंकियां झंडे बुंगे जुगा जुगे अटल धर्म का जयकार बोलो जी वाहे गुरु बोलो जे सिखां दा मन नीवा मत उची मत पत दा रखां आप वाहे गुरु हे अकाल पुरख अपने पंथ दे सदा सहाई दातार जियो श्री ननकाना साहेब अते होर गुरद्वारियां गुरधामां दे जिन्हां तों पंथ नूं भी छोड़िया गया है खुले दर्शन दीदार ते सेवा संभाल दा दान खालसा जी नूं बख्शो

समूह संगत अते टहलियां दी अरदास सतगुरु जी आओ सरबत साध संगत नू अपने दारों घरों सिखी सिद्धक भरोसा नाम दान बख्शना शुभ भावनावां पूरियां करनिया आप जी दे हाजूर कड़ाहा प्रसाद दी देग हाजर है दर प्रवान होवे प्रवान होया प्रसाद संगत विच वरतौण दी आग्या बख्शो सुख होवे नाम चेते आवे सिखा पढ़दे सुनदे सरबत लाहे बंद होवन नानक नाम चढ़दी कला तेरे भाणे सरबत।